0: गिलास तुमको वाफी
1: इन्ना मुआ न्यालेमेटिक हम रुफ्तों जो न्यालेमेटिक हम रुफ्तों जो दे चूरना फा निफाउसाना आराप साइनना से आराप साइन जाइ इन्होंने तो कोई फाउसाना आराप साइनना से आराप साइन ये तुम ठीक हैं दिया ओटन रावता तेरे के लिए ये जग कंबा ये टेल तो शंदल फिर जो ये ड्राफ्ट डिटरेट जोआ दिया तुंगा दिखे नहीं मार रिफ़ माय वावेनोआ आवावेनोआ दिमानं रार्गी दिमातुंगा लेफ़ुंबा फ़तेने ना अम्तिन लतीन अलीज वे वोलो एरगोसुं जानू रिफ़ शीता कुछ वाज़ा वाज़ा कुलीजा दिमानं मारना क्या जिन मनाइरं जिन बुले लुवाची क्या मुफ्तों जो आरिशं जावटा लुवाची क्या मुफ्तों जो दिन फ़ेवेरा ना ची क्या फ़ा मांट म्याक अम्बुलरिट जिन जावटा मुशो दे राखाने नो का अनेरीना ने शेंडर बाबा नज़ावे ये फ़ट चिम तुम्बु जाने दे लिंगलिंगेरी में जका जका मने बका σε τι φυσαίναν μπαζάζαν, να φυσαίναν να τσιμπτούν μπαζάν, να φυσαίναν τσαγγεβεύ. Δεν με βοτσίξε σε βατσέι. Ρατσούρν ζάν, δια βογέτζαν φούμπα φυσαίναν τσίκια, και τσι αν φυσαίναν ούλα βογέτζ, βρέρακα νοαζα ούνα μαντούσο αμ τίρα ρατί. Δεν τζάβατα τίκο ζάβ αμ τσίκια ρετρέτα.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.